0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। जापान के एक अस्पताल ने इंड्यूस्ड प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स या आईपीएस से हासिल शुदा दिल के अजलाती खलियों की तहों का इस्तेमाल करते हुए दिल का पहला ऑपरेशन किया है। मार्च में हुकूमत की जानिब से इस तरीके इलाज की मंजूरी के बाद ये अपनी नौयत की पहली सर्जरी है। एनएचके को मालूम हुआ है कि यह ऑपरेशन मंगल को ओसाका सिटी के ओसाका के सत्स अस्पताल में किया गया। कल भी अजलाती खलियों की तहें यारी हार्ट हुकूमत की तरफ से मंजूरी के बाद सितंबर में हेल्थ इंश्योरेंस के दायरा कार में शामिल की गई हैं। इन शीटों की पैबंदकारी ऐसे मरीज में की गई जिसकी उम्र 50 के पेटे में है और उसे दिल का शदीद आर्जा लाहक है। सर्जरी तकरीबन एक घंटे में मुकम्मल हुई और मरीज की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। इन शीटों को तैयार करने के इंचार्ज और ऑपरेशन को अंजाम देने वाले अस्पताल के सदर सावा योशिकी ने कहा उन्हें उम्मीद है कि यह इलाज तेजी से आम होगा, लिहाजा इससे उन लोगों की थोड़ी बहुत मदद हो सकेगी जो इस तरह के आर्जे से दोचार हैं। इन शीटों के लिए मशरूत हुकूमती मंजूरी मिली है जिसमें मजीद सर्जरियों के जरिए इनकी हिफाजत और अफादियत की तस्दीक करना शामिल है। इन्हें तैयार करने वाली कंपनी का हदफ 2033 तक मुल्क भर में तकरीबन 20 तिब्बी मराकज में 75 मरीजों में इनकी पैबंदकारी करना है। बैनुल्कवामी फौजदारी अदालत आईसीसी ने मंगल को ऐलान किया है कि इस साल की सालाना असेंबली को नीदरलैंड्स के दिहेग में मुंतकिल कर देगी। असेंबली नवंबर के आखिर में शुरू होती है। असल में ये दिसंबर में न्यूयॉर्क में अकवामे मदहदा के सदर दफ्तर में होनी थी। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अदालत पर दबाव डालते रहे हैं। उनकी इंतजामिया ने अगस्त में सरबराह अकाने तोमोको समेत आईसीसी की क्यादत पर पाबंदियों का ऐलान किया। इसकी वजह से वीजा पाबंदियों जैसे खदशात पैदा हो गए जो मुमकिन तौर पर अकाने समेत कुछ अहदेदारों को जाती तौर पर असेंबली में शामिल न होने पर मजबूर कर सकती हैं। जराए का कहना है कि मकाम इनेकाद की तब्दीली गैरमामूली है। मलेशिया ने म्यांमार के 5,000 पनागुजीनों को वापस अपने वतन भेजना शुरू कर दिया है, जहां फौज के 2021 में बगावत के जरिए इक्तदार पर कब्जे के बाद से शोरश जारी है। वतन वापसी का पहला मरहला मंगल को शुरू हुआ जब तकरीबन 1500 अफराद को मुल्क बदर कर दिया गया। पनागुजीन बसों के जरिए एक बंदरगाह पर पहुंचे जहां उन्हें म्यांमार की बहरिया के जहाजों पर मुंतकिल किया गया। मलेशिया ने इस मंसूबे का ऐलान गुज़श्ता माह म्यांमार के फौजी हमायत याफ्ता हुक्काम के साथ एक मुआहदे के तहत किया था। क्वालालंपुर का कहना है कि वतन वापसी का अमल मुकम्मल तौर पर रजाकाराना है। यह फैसला ऐसे वक्त किया गया है कि जब महाजरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा था और महाजर मुखालिफ जज्बात बढ़ रहे थे। अक्वामे मुत्तहिदा का कहना है कि मलेशिया म्यांमार के तकरीबन 1,90,000 महाजरीन की मेजबानी कर रहा है। 60% से ज्यादा पनागुजीन रोहिंग्या मुसलमान अकलियत हैं जिन्हें अपने मुल्क में जबरो इस्तबदाद का सामना है। अक्वामे मुत्तहिदा और इंसानी हकूक की तंजीमों ने खबरदार किया है कि फौज और जमहूरियत की हामी कुवतों में झड़पों के साथ साथ नस्ली मुसल्ला ग्रोहों के दरमियान जारी लड़ाई के माहौल में पनागुजीनों की महफूज वापसी के लिए सूरत हाल साजगार नहीं है।
1: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।